0: और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
1: तू बेवफा लुट के खा गई ऐसा कुछ नहीं मिली तू सही अपनी जगह
2: इंप्रेस कर रहे
1: तू हाँ कितने रही है
2: तरीका तो सही लग
1: पाया काम तो आया नहीं

0: listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Low Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions.

0: वो एक स्ट्रगल में है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, जितने बाकी हैं। कहने का मकसद ये है, अपने पे कमाते अपने में खाते हैं, ठीक है। उन्होंने स्पेयर की, उनको कुछ फायदे भी हुए, लेकिन नुकसान कितने असर उन्होंने, कितना नुकसान उनका हुआ। आखिर बुजुर्ग बीमार है, वालदेन बीमार, एक घर होते थे, चलो एक की खिदमत वो करता है, नहीं है दूसरा कर लेता है, चलो उसका इशू कर देता है, वो एक दादा दादी की, वो क्या हुआ आस्ते आस्ते ये निज़ाम खत्म हो गया। अब वो बीमार है, घर में पड़े हुए हैं, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हर बंदा अपने अपने बच्चे अपने में काम कर रहे हैं, कोई इस मुल्क में है, कोई दूसरे मुल्क में है। अब जो है वो फिर क्या हुआ? फिर वो दूसरे इन मुल्कों में, चलो वो और जो है वो में चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए। क्या ये जो फैमिली सिस्टम था, मैं इत्तेफाक की बात कर रहा हूं, ये जो यूनिटी थी कि करते थे, आप यूनिटी में तरक्की करते हैं। देखिए बैठ जी, एक बात ना, किसने तरक्की की है, कैसे की है, किस तरह हुआ है? मैं तो ये कहूंगा कि ये सारी की सारी चीजें, ये जो अलग अलग सिस्टम जो है, अलग अलग जो सोच है, जब घर तकसीम किया तो तकसीम करने के बाद फिर जब तकसीम की चीज करते हैं, फिर वहां से तफरीक बनती है। ये एक उसकी मैं मिसाल बेशुमार मिसालें देता हूं कि 9 पर दो तकसीम करते हैं तो 4 पर जाएगा, और आप लिखने के बाद माइनस करके 1 होता है। बात कितने की है, तकसीम है, तकसीम में बचता कोई नहीं है, और जब सब जमा हो जाता है। ये खास फलसफे की बात है, ये बस वैसे भी बात, यकीन करें वो जो जिन लोगों अमीर हो गए वालदेन खिदमत हो रही है, अब्बा जान को देखा देख रहे हैं, अम्मी जान को देख रहे हैं, अम्मी जान के लिए कुछ चीजें मां क्या खाना है जी, वालद ने क्या खाना है जी। कहने का मकसद यह है, वो प्यार मोहब्बत वाली वो जो एक फजा थी वो कहां चली गई। इसका मतलब यह है कि जब ने ये इत्तेफाक एक घर के अंदर छोड़ इतने तफरी का शिकार हो गया, एक खानदान कितनी तफरी का शिकार हो गया, एक देहात कितनी तफरी का शिकार हो गया, फिर उसके बाद जो है वो फिर मुल्क है, वो मुल्क कितनी तफरी का शिकार हो गया। आज इस मुल्क को बनाने में सब जो है वो कश्मीरी भाई वो बुजुर्ग थे, बलोचिस्तान बुजुर्ग थे, हमारे बुजुर्ग भाई वो पंजाब थे, KPK के थे, खैबर पख्तूनख्वा के थे, सिख के थे। ये सारे जो बहन भाई मर्द खुवातीन ने अपनी जान अपनी माल और औलाद सब कुछ जो है वो कुर्बान करके ये किया। ये कहते हैं कि ये जो यकजहती आएगा ये मुल्क का सबसे जरूर बनती, हमने क्या किया इसमें किया। मैं तो एक सवाल करता हूं, अगर इस मुल्क से हमने मुल्क को दिया, जब बात भी वो है कंट्रीब्यूशन एक रुपया किसी चीज में, अगर दो तो कितनी ज्यादा। देखें एक सिरे से शुरू करें, आप एक तरफ से शुरू करें जी, कहां से शुरू करें, कहां पर खत्म करें, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो यूनिटी हमने भी छोड़ी, अवाम के अंदर से यूनिटी खत्म हो गई, इत्तेहाद इत्तफाक प्यार मोहब्बत जज्बा ये सारे खत्म हो गए, बीमारी लग गई नफरत की, असद की, बुगत की, बिल्कुल ये जो के अंदर भी वो भी अच्छे जी। आज अगर ये जो हुकूमत बैठी है, हुकूमत खत्म यहां पर फिर उस दुकान पर बैठ गया, सिर्फ अच्छी हो जाएगी हमारे लिए, इतनी अच्छी नहीं होगी। बात तो इतनी है, कहने का मकसद ये है कि आज जो है उनके अंदर उनकी भी सोच बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारी सोच है, लेकिन आज है हमने बाकी चीजों को देखना है। ये मोहब्बत और प्यार की महफिलें हैं, ये बाबे को देखना है कि 9 साल गुजर चुके हैं, 79 ईयर, अगले साल 80 साल हो जाएंगे इस मुल्क को बनते हुए। अब कहते कुछ या अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, बहुत कुछ हमने हासिल किया, बहुत कुछ बहुत कुछ हासिल करेंगे। ये तो बात रखें जी कि हर आदमी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है, अपने हिस्से का कुछ ना कुछ काम किसी न किसी बंदे ने जरूर किया है, अल्लाह ताला से काम लिया है। बाकी जो हम पर भी जिम्मेदारी है, कुछ काम जिम्मेदारी है उस उन पर नहीं है जो सबके सामने जाते हमें जो है वो मुंतजिर मुंतजिर ये ना कि आप कुछ काम नहीं है, यानी हम समझते हैं कि सारे काम अब करते हैं सब निजाम उन्हीं के सब हो, हम सिर्फ कोई काम नहीं। इस तरह ना घर तरक्की कर सकता है ना मुल्क तरक्की कर सकता है। लिहाजा आज दूसरी जो बात है बाबा कौम की इस बात में इत्तेफाक, ये जो यूनिटी है ये जब किसी भी घर में होगी, किसी भी माहौल में होगी, किसी कम्युनिटी के अंदर होगी तो यकीन करें वो बहुत बड़ी तरक्की और उस मंजर पर जाएंगे। और जिस मुल्क ने इस्लाम दुनिया को जिन लोगों के अंदर ये यूनिटी ये जो चीज पाई जाती है आज देखें वो कितनी तरक्की पर है, कितनी आला जो है वो उस रास्ते पर चल रहे हैं। और अब जो है वो यह नज्म जब्त डिसिप्लिन, अब जब ये तो डिसिप्लिन ये होता है नज्म जब्त, एक तरीका एक सलीका एक असूल एक कानून एक जाब्ता, भाई जिंदगी गुजारने का एक आदमी को तरीका बताया जाता है ना जी। मसलन यहां पर फर्ज करें अभी मैं ये तरीका बता रहा हूं कि हमें इत्तफाक से रहना है, इत्तफाक का तरीका करना है, फैमिली टूगेदर फैमिली से इकट्ठे रहना है, ये बात है ना। अब ये एक फलसफे में रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं, ये भी मैं किसी असूल के मतलब मैं अपनी पास से बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह रहा हूं, मैं तो ये किसी औलिया और आखिर में ये है इसको लेकर इस्लाम में मुकम्मल ज़ाबता आयत है, इस बात को वहां आपको वही रिजल्ट मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर डिसिप्लिन की पाबंदी अगर अल्लाह नबी ने डाली है, पर पांच दिन नमाज अदा करना है, डिसिप्लिन ये है कि वो नमाज जो है वो कत्ता किताब मौकूता वक्त मकर कर दी गई है, डिसिप्लिन है या नहीं है। पेशे की नमाज है मैं हूं डिग्री पढ़ लेता या मर्जी पढ़ लिया बाद पढ़ लिया कोई नहीं, टाइम के ऊपर उसी का जो है वो पूरे का पूरा सवाब है। अगर इधर उधर कर लेते वो कजा वो बेशुमार जो उधर फिर वो मजदूरी आ जाती है जी, ये गुंजाइश जो हमको मिलती है ना गुंजाइश है जी, तो उस गुंजाइश से बड़ा फायदा उठाते। असल में ये गुंजाइश जहां पर भी मिली हमें इतना फायदा उठाते हैं कि छोड़े फिर आगे बात हो। बहरहाल अल्लाह खैर करे, बात ये हो रही डिसिप्लिन की। अब वो जो बाबा कौम ने नज़्म ये तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू है, रमजान बारह के रोजे हैं, गर्मियों के अंदर आ गए, कभी मर्जी कर सकते हैं कि जून के महीने में जी बड़े लंबे रोजे जी 18-19 घंटे रोजा, सऊदी अरब में पाकिस्तान में इंडिया में बड़ी गर्मी होनी जी, वो सकी है ना बड़ी तसा गल करिए सर्दी गर्मी है नहीं, अगर हम सोचे कि नहीं खैर ये ना सब नहीं है फिर थोड़ा थोड़ा करके रख लें नहीं, एक रमजान बस रोजे शुरू हो जाएंगे, फिर वो गर्मी सर्दी की बात नहीं है, सुबह से लेकर शाम भूखा कभी को आलम साहब कहने नहीं जी कोई गर्मी बड़ी है जी चलो थोड़ा बहुत पानी गंदा पी ले तो कोई नहीं मतलब फर्क पड़ना खैर है रोजा तो रखे नहीं का मतलब डिसिप्लिन रोजा इससे पहले है वो अपने में तरीका थका कि वो तरीके का अब हमने वही तरीका अख्तियार करना है। अब यकीन करें फिर वो बात हो जाएगी, फिर उलमा कराम का ये मसाइल है, लेकिन ये शैतान को कंकरी मार के जो जाते हैं रहते हैं, अब उसके अंदर भी एक टाइम का तरीका जो है वो मौजूद है। अब सिर्फ क्या कि चूंकि वो टाइम उस टाइम के अंदर जो है ज्यादा लाखों की तादाद में अगर लोग एक जहाँ पर होते तो फिर बड़े हादसा हो जाते थे, उन्होंने इस टाइम को इधर उधर करके बस थोड़ा मैं जो चीज को कर एक तरीके के मुताबिक वो तो अलग है चलो ठीक है गलत है ये तो अल्लाह खैर करे, लेकिन बात यह है कि हर एक चीज की एक टाइम है, उस टाइम के मुताबिक ही सब काम कर रहे हैं जी, इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। और यही डिसिप्लिन जिंदगी में हमने जो बरकरार रखना है। अब ये तो हो गया स्वामी लिहाज से, हो गया जिंदगी का है जी। अब जिंदगी का डिसिप्लिन सुबह सवेरे उठना है, डिसिप्लिन है जी, सुबह सवेरे काम पर जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल छूटने के बाद वापस आना है, इतने बजे मैंने ये काम करना है। इसका मतलब यह है कि ये नज्म व ज़ब्त, ये जो जिंदगी के अंदर ये जो असूल ज़वाबत के मुताबिक जिंदगी गुजारना जो है, इसी में तरक्की है। जिस कौम के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, नज्म व ज़ब्त नहीं है, न वो घर तरक्की कर सकता है, न वो कम्युनिटी तरक्की कर सकती है, न ही मुल्क तरक्की कर सकता है। अब मुझे ये बताएं कि हम अपनी अगर मिसाल दें, इस मुल्क में देखें, हमने बेशुमार लोग हमारे बहन भाई हैं यहाँ पर काम करते हैं, दफ्तरों में ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अदारों में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो अंग्रेज है यहां पर, वो जो है वो अगर उन्होंने 7:30 बजे काम पर शुरू करना है तो वो 10-20 मिनट पहले जो है वो जाकर वहां पर पहुंचेंगे। हमने वही काम के साथ करना है, लेकिन हम जो है 5-2 मिनट पहले जाएंगे। अब वो काम दिल से करेंगे, हम एक पाबंदी में जी बड़ा थकिया सो जी, बस वो बड़ा मुश्किल हो गया जी, आज तो यकीन कर सो बिल्कुल किस तरह मैं कम कर सा। जाते हैं कहते हैं चंगा जी मशीनें जी खराब हो गई, ये तुम्हारी सोच है जी। ये हम समझते हैं कि हम अपना फायदा उठा लें, इस अदारे का बेड़ा गर्क कर दें। ये लोग ये नहीं करते। इसका मतलब नज़्म ज़ब्त किसके अंदर है, डिसिप्लिन किसके अंदर है? वो इस्लामी सिस्टम जो है, वो जो फितरी तौर पर जो चीजें हैं इधर इधर, बस मुस्लिम आई हुआ काफर तो मिले उरो कसूर। बात यह है कि ये गिला अल्लाह साहब ने किया था ना कि अल्लाह ताला हम तो आपको मानने वाले हैं, हम तो यकीन मुकम रखते हैं, हम तो मुसलमान, हमने ये भी किया वो भी किया सब कुछ किया, लेकिन जो है वो हमें तो दुनिया में मिला कुछ नहीं मिला, कोई सुख नहीं मिली, कोई जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ। और सिर्फ ये वादा है कि हम वादा फकत वादा है, उर की क्यामत में हमें वो उरे मिलेंगी, जन्म मिलेंगे, यहां कुछ नहीं मिला। अल्लामा साहब ने शिकवा किया तो फिर आगे से जो है वो ये जवाब आया कि फितरत अजल जो है उसका एक दस्तूर है, उसका कानून का है कि अगर जो है वो जो मुसलमान नहीं है, अगर वो ये डिसिप्लिन, यही बात कर रहा हूं जी, इत्तेहाद इत्तफाक बात कर रहा हूं, वक्त के अलार्म रोजी की बात कर रहा हूं। अगर एक आदमी मुसलमान नहीं भी है लेकिन वो टाइम पर जाता है, अपनी दयानतदारी के साथ काम करता है, दयानतदारी के साथ वो अदल इंसाफ की पाबंदियां करता है, जो जो गवाह, तो मुझे ये बताएं उस वो जो अदल है, वो जो फितरी रास्ते पर चल रहा है, उसका फायदा नहीं होगा जी? एक कॉमन सेंस की बात है ना जी, अल्लाह ताला के तो उसको तो अदल का जो है वो देखें, ये मिसाल दे रहा है, ये अभी GCSE के जो है या ए लेवल के रिजल्ट आने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर मैट्रिक के रिजल्ट निकले जी, और कुछ स्कूलों के अच्छे भी रिजल्ट हैं उनको मुबारकबाद, और जिन स्कूलों के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं वो भी असातिज़ा कराम है, वो गाँव के लोग हैं, वो कम्यूनिटी है, वो हुकूमत है, कम अज कम यार इस बात पर भी नजर रखें, क्या वहाँ पर डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त का है कोई? वो क्या ये तो हम अपने अगर किसी अपने अपने मुल्क में अपने गौ देहात की बात करें, अपने इलाके की बात करें, तो बेशुमार लोग इस मीडिया हैं, प्रोग्राम सुन भी रहे हैं, क्योंकि वो अगर 20 साल पहले 30 साल पहले वो जो बुजुर्ग थे हमारे, वो सारों के अंदर कितना नज़्म डिसिप्लिन था, उनके अंदर यकीन था और डिसिप्लिन था, सोच होता था। अब उस अदालत पर ये तीनों चीजें कुछ नजर नहीं आता, जब नजर तो रिजल्ट जीरो ही होगा ना जी। हर चीज का नतीजा बनाने के लिए एक सिस्टम के अंदर जो है काम करना पड़ता है। बर जो है वो बात ये है कि अल्लामा बाबे कौम के तीन फरमुदार जो है, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, इस पर हमने काफी गुफ्तगु की है, और हम ये समझते हैं कि तमाम जो जितने भी हमारे बहन भाई हैं योम आज़ादी की, उनकी बहुत उनको सबको बहुत बहुत मुबारक, लिंक एफ एम 96.7 FM की तरफ से, PMC के इंतजामिया की तरफ से, हम सब की तरफ से, یہاں پر جو مرضی خواتین آزاد کام پروگرام کرتے ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو بہت بہت جو ہے وہ یوم آزادی مبارک. یوم آزادی جناب گج وج کے منائیں, یہ ملک کی ترقی, یہ بات, یہ باقی بھی ہوگی انشاءاللہ. خوشی جو ہے آج اس ملک کی, یہ ہماری پہچان ہے, یہ سب کچھ ہے. لہذا آج ہم نے یہ بات ضرور سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا ٹائم نکالنا ہے اور اس کی سیلیبریشن کے اندر ہم نے حصہ اپنا لینا ہے. باقی ادھر ادھر باتیں ہوئی ہیں, اور اگر ہم نے تیار یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو بابا قوم کے ماٹو پر ہم نے اس نصب العین پر عمل کر کے ہم نے ملک کی اور اپنی ترقی جو ہے وہ کرنا ہے. غلطی کی معذرت جی, ملتے ہیں بریک کے دوسرے حصے میں.
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
8: لو جی سنو جی, آئی گئے خان کیٹرنگ والے. خان کیٹرنگ رادرم, جنہوں نے مزیدار کھانے نا کوئی جواب ہی نہیں, ایک واری ازمائی کے تکو. شادی بیاہ, سالگیرہ, مانیا, مہندی اور دیگر تقریبات واسطے ایک مہنگائی نے دور وچ سستا تے مزیدار کھانا آرڈر پر بنوائی سکنے ہو. ایک اور بھی گل بجو, خان کیٹرنگ رادرم والے پورے ساؤتھ یارکشائر وچ کیٹرنگ نی ڈیلیوری بھی کرنے. آرڈر نکاح ہویا یا بڑا, آلویز ویلکم. کھانے نے آرڈر واسطے پائی افتخار کی فون کرو یا واٹس ایپ پر رابطہ کرو 07931737547
9: یا 07784850934.
10: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

0: उसमें कुरान इस्लामियत ला, हम तो उनको जो से जो उनको पढ़ते हैं वो इल्म के मोती वो किताब देखें जो उनको यूरोप में तो दिल होता है सही पारा अल्लाह अपनी गलती को ताकि माजरत जी कोई बातें इधर उधर हो जाती हैं तो तमाम जो है वो बहन भाइयों से माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के दूसरे से में आपकी पंजाबी जबान चोसी जी इंशाल्लाह मिल रहे हैं ब्रेक से दूसरे से कामयाबी और कमरे में।
1: If you would like to promote your business on Link FM,
2: you are listening to Link FM.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: Assalamu alaikum, I am Naeem Azharvi and you are listening to Link FM.
5: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Thurrock Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, seven law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board

रूह जा वो जो बड़े जी उन्होंने एक बादशाह तलवार है वो उन वास्ते आँदी है जी वो फिर उसका नाम भी सैफुल मुलुक वाई मल मुलुका नहीं मलका नहीं बादशाह नहीं तलवार ये नाम रखता गया बड़े लोग बहुत अच्छे तरीके तरबियत उसने हुई ट्रेनिंग हुई जवान हो गया कुछ तो भी ताए थे जनाब उपराने बाप दादे ने वेले ने टिके पे वो समझ आ गया कि चलो मैं उन बुजुर्ग हूँ तो तब तो फिर ताए इसने वाला करो ये फिर सारे उस जगह पर तस्वीर एक नजर उस आपकी तस्वीर में ना की तस्वीर देखी की थी तो वो बदल जमा उसने इश्क गिरफ्तार हो गया उनको पता नहीं है कौन है कौन नहीं है वो बड़े बेशुमार बंदे को बादशाह नमन बड़े दुनिया पूरी फिरन ताकि कुछ सिरा लगे ये कौन सफल मनु की आखिया कि तू उसकी आंखों पर और तू गठे चीज नहीं बरल शहजादा दीवानी चला गया इश्क बहुत जरा ही लेवल पर चला गया वो काफी मतलब फिर उसकी जेब करता गया बरल कहने ना मतलब खाक की फिर उसकी एड्रेस तू अगर आ जा तो मैं तेरे मुलाकात हो जाती याद रखे वे ये एड्रेस ये पता जो पता निशानी मिल जानी लेकिन जहां लोग जी जिस दी लोड उससे बेचारे दी लोड करनी किसे वक्त लोड़ने किसे की हो तो गमी आप जाने हो तो अगर मियां साहब असंत गप्पां शप्पां चल चली रही हैं यकीन कर सो कि टाइम होना ही नहीं कि कोई गगन ਇਸੀ ਮੋਰਿਜ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਐਸੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਾਓ ਉੱਤਰ

अच्छा मैं अपने वाले साहब जैसा तो खैर नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने वाले साहब की और चचा की आवाज़ बनाने की। अगर आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा बहुत भी कामयाब हो गया हूँ अपने वाले साहब या चचा की आवाज़ बनाने में, तो आप लोगों की दाद मेरा हौसला अफजाई करेगी। समाज फरमाए चचा का और वाले साहब का दाद।

यकीनन आपको मजा आया होगा ये कवाली सुन के। और यकीनन कवाली जो होती है अक्सर उसमें, जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था कि मैसेज होते हैं इसमें बड़े खूबसूरत, और बड़ा खूबसूरत जो है वो अंदाज में एक आखारी का एक अलग तरीकाकार होता है, जैसे कि गाने को गाना गा के उसमें जो है वो अपनी जो कैफियत है उसको बयान किया जाता है, इसी तरह कवाली के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rani Shrock.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rani Shrock.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.

खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर। प्रोग्राम है कवाली शो और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी और खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कलाम आप सुन रहे हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

खुश आमदेद, जिनमें अभी ज्वाइन किया ये क्वाली स्पेशल और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। और क्योंकि वक्त था ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, स्टे ट्यून्ड। और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ।

तो फिर आपसे डायरेक्टली उस वक्त बात तो नहीं हो सकती क्योंकि इस वक्त तो मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं होता आपके लिए, पहले ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया जाता है। तो अगर आपकी पसंद की कवाली हो तो आप जरूर बताया करें, कॉल किया करें दिन के वक्त, या फिर हमें मैसेज कर दिया करें 07794818222 पे। आप सुन रहे हैं इस वक्त लिंक FM और ये है कवाली स्पेशल। चलते हैं अगली कवाली की तरफ।

0: FM, Sheffield.
1: Link FM.
2: You are listening to Link FM.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
5: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114-308-2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the

0: listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
0: Linking communities, thinking positive. This is your local community radio station, Sheffield's Link FM.

0: Usman.
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
11: And the winner is
12: Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
17: My name is Abed Rahman.
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is
4: Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
12: And the winner is Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.

मैं न जाऊंगा बदल बाप कभी छोड़ कर ये गलियां, मैं न जाऊंगा बदल बाप कभी छोड़ कर ये गलियां के मैं पा

0: से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
0: फर्नीचर तो आप घर पर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10-6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
0: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम सबको अल्लाह पाक सेहत आफियत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। हमारे घरों में अल्लाह पाक अपनी रहमतों का, अपनी बरकतों का और अपने फजल का साया कर दे। मौला आज तो हक बनता है, आज तो हक बनता है मौला तुझसे तेरे बंदे होने का। अल्लाह आज तो हक बनता है तुझसे तेरी रहमतें लूटने का, आज तो हक बनता है तेरे बहुत करीब होके। जो तूने वरफाना लक जिक्र फरमा दिया, वरफाना लक जिक्र और उनकी और उनका उस्वाए हसना जो है हमारे लिए मशाल राह बना दिया। मौला आज तो तुझे उसी हस्ती का वास्ता और मौला पंतन पाक मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा दी जनाब मेरा गौस पाक जली का वास्ता है। अल्लाह आज तो हमारी कामयाबियों और कामरानियों के रास्ते वाह कर दे। अल्लाह करीम आज हमारे ऊपर अपनी शफकत की मोहब्बत की नजर डाल। मौला मैं तो खुद मानती हूँ बहुत आजिज मस्कीन सी, कायनात के जर्रे बराबर मेरी औकात नहीं, मगर तेरे करम के सिलसिले जिसको तू चाहता है बड़ी इज्जतों से रिफतों से नवाज देता है। मौला आज तेरी बंदी तुझसे यहाँ पे बैठ के सबसे मैं माफी की भी तलबगार हूं कि अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचाई, किसी के लिए मैं बाइस जरर बन गई तो मैं अल्लाह पाक की रजा के लिए सबसे मैं माफी चाहती हूं। जब अपना दामन खुद का हम अपने पेश करते हैं तेरे हजूर तो मौला मौला पूरी दुनिया में जहां प्रोग्राम सुना जा रहा है पता नहीं कितने तेरे बंदे बंदियां तुझसे इस वक्त अल्लाह मोहब्बत की रहमत की आफियत की भीख मांग रहे हैं। मौला मौला तुझसे मांगना अच्छा लगता है, अपने दिल का हाल तुझे सुनाना अच्छा लगता है क्योंकि तुझसे तो मांगते तू पर्देदारी कर देता है। तो हमारे ऐब नहीं किसी पे खोलता मौला, तेरी शान है तू करीम है तू अज़ीम है। मौला कितनी नादानियां कर जाते हैं हम दूसरों को अपने राजदार बना के, फिर क्या से क्या मौला करीम हालात हो जाते और डरते फिर तेरी आगोश में तेरी रहमत की पनाह में आ जाते हैं। मौला फिर डरते बिलकते सिसकते कि कहीं इंसानियत के लिए हम जरे बाइसे जरर ना बन जाए, बाइसे नुकसान ना बने। लोगों के दिल तोड़ देने वाले रवैये देख के उनके ऐसे ऐसे मादरों पिदर आजाद फिक्रात सुन के अल्लाह करीम तेरे पास दौड़ के आके तेरी बारगाह में पनाह ले लेते। भला क्योंकि हमें मान है कि तू रब्बे अजीम है। मौला इंसानों से गलतियां होती भूल चूक हो जाती है मौला हमसे, ना चाहते हुए भी पता नहीं कैसे हमसे भूल चूक हमारे नफ्स की तबाहकारियों से हमें बचा ले। मौला मौला हम तो अपने ही नफ्स की तबाहकारियों के हत्थे चढ़ जाते, हमने किसी को क्या ब्लेम देना। मौला आज अल्लाह पूरी कायनात पूरी मखलूक पता नहीं तेरी अल्लाह ये पूरी वर्ल्ड वाइड है अल्लाह तेरे आगे झोलियां फैलाए हुए। अल्लाह पाक तू रहमान है, अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल करीम हमें सुकून देने वाला, अला भी जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह तेरे आगे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्लाह भीख मांग रहे हैं करम की, तेरे फजल की, तेरी रहमत की। अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे या रब्बे फिर वर हम अंता खैरुर राहिमीन। मौला किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ ज्यादती हो गई अल्लाह माफ कर दे, तू माफ कर दे, तू माफ करने वाला है। और बिलाशुबा पहले सबसे पहले इन लोगों से जो कोई सुन रहे हैं या जिनके साथ कोई ऊंच नीच हो गई मौला तेरे करम से माफी मांगी है। मौला मौला क्योंकि तुझे पसंद है, तुझे पसंद, तुझे माफ करना बड़ा पसंद, ये तेरी खूब है, ये तेरी या अल्लाह सुनो तेरी सुन्नत पाक जिसे कहते हैं कि तुझे माफ करना बड़ा पसंद है। और तू जिनके ऐबों पे पर्दा डाल लेता है सबके ऐबों के पर्दा डाल दे, अल्लाह सबके ऐब माफ कर दे, गुनाह अल्लाह करीम आज अजीज से

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
11: And the winner is
12: Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is
4: Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
14: This is Link FM.

0: There is only one.
1: अगर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
4: जी बिल्कुल मज़े सामने इकराम, ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है, जहां आप जुमा करीम की खसूसी नशियात जो है वो समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 और हमारा दूसरा नंबर है 07800-5995-63। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल मुबारक है कि इंसान का वजूद जो है वो एक दुकान की मानिद है और जो इसकी जुबान है वो इसका ताला है। जब हम ताला खोलते हैं तो पता चलता है कि अंदर मालो इसराफ क्या है। तो देखे सुभान अल्लाह, लबा कभी भी शिमा फरमाए कि देखिए सुभान अल्लाह कि कितना खूबसूरत हमें बता दिया गया कि हम जब अपनी जुबान से जो भी कलमात, हम अपने सबसे पहले तो हम अपने अल्फाज के खुद जिम्मेदार होते हैं। एक दफा आपके हमारे जुबान से जो अल्फाज मुंह से निकल गए तो फिर हम उसके जिम्मेदार हैं, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक करते हैं। इसलिए कहा गया है कि खामोश ज्यादा रहा करें और जब बोलना है तो अच्छा बोलें वरना खामोश रहें। जी ये भी है हमारे इस्लाम में कि खामोशी उस वक्त कि जब आप कोई अच्छा बोल नहीं। देखिए जब आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, आजकल लोगों को जवाब देना या वो तलवारें डा वो सोटी लाठी जो भी है उठाने की बजाय आजकल मीडिया पे मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाता है। क्या ये मुंह तोड़ जवाब देने से बेहतर नहीं है कि हुस्ने असलूबी से आप किसी को ऐसी कहते हैं मार दे कि जो आपके हुस्न नजर को, आपके हुस्न को जाहिर कर दे, ना कि आपके अंदर की छुपी आप मादर पिदर आजाद गालियां देते। आप दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को कि तुम होते कौन हो, किसी के लिए जर्रा बराबर आपकी शान पाक में, आपकी शान मुबारक में भाई क्यों नहीं होता है? वो कहते आप होते कौन हो, मुझे मैं तो वो मैं तुम्हें और ये तुम क्या हो, तुम्हारी औकात आप सबको पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब ऐसे इंसान ऐसे क्या कहूं कि लघवियात पर आते हैं, क्या से क्या कर जाते हैं महज ये साबित करने के लिए कि वो बहुत जो है आला वर्फा है, दूसरे तो कुछ भी नहीं, उनकी औकात भी कुछ नहीं। अरे नहीं, सुनिए आप एक बार ठहर जाइए। हुस्न असलूबी से कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए, मैं आयत मुबारक का मफहूम वक्त की नजाकत के तहत बयान करूंगी। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए कि जब तुमसे कोई बुरा सलूक करे तो उसको अच्छाई से जवाब दो। कोई ऐसा वक्त आएगा, एक वो देखेगा कि इसने मेरी बुराई से की बजाय मुझे अच्छाई से जवाब दिया है तो वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त बन जाएगा। ये कुरान का पैगाम है जी। किसका कहना मानना है? अपने शैतान, अपने नफ्स का कहना मानना है, जिन्होंने आपको भड़का दिया है, वो तुम्हें ये कहा, उसने तुम्हें ये, आपने उनकी सुननी, अपने नफ्स की, शैतान की सुननी या रहमान की सुननी, किसकी सुननी? फैसला आपने करना है जी। बिल्कुल, ये सबसे पहले तो इस आयशा अख्तर के लिए डेरू डेर दुआ करें, रो रो के दुआ करती हूँ, वाला मुझे बाइसे खैर और बरकत बना दे दूसरों के लिए, मेरी गलतियों को ताहिया लग्जिशें माफ कर दे, हम गलतियों के बुतले हो जाते, गलतियां होती ना चाहते हुए भी, और अपने नफ्स को इतना हमने परवान चढ़ा लिया है कि कोई होता कौन है कि जी हमें हर्ट कर दिया, हर्ट किया तो रब के, अरे उसवा हसना देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादियों में नौजवानों ने, अरे अल्लाह के नबी रहमत लिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन, वो रहमत लिल आलमीन, उनके तखने मुबारक लहूलुहान कर दिए गए। क्या कुछ नहीं कहा, नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, उनको शायर कहा, अस्तगफिरुल्लाह नाउज बिल्ला। वो वजह तखलीक कायनात है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप हुक्म दे तो ताइफ के पहाड़ उनके ऊपर गिरा दूं। इतना अल्लाह को, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन नाज़िल हो गए, फरमाया नहीं, मुझे आई हवा आ रही है कि इनकी नस्लों में से जो है वो कोई इस्लाम के दाई होंगे। हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, और सबसे पहले तो जब हम यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे बैठना अल्लाह के बंदे बंदियों इजी काम नहीं है। आपने आपको देखना होता है हम किस जाविये, किस एंगल में, फौरन हमें जब किसी से बात करते हैं, अरे वहां तो बहुत अच्छी बातें करती हो बीबी, ये क्या, फौरन अल्लाह ताला इन तानों से बचाए। अल्लाह पाक हमें, आपको, हम सबको, मेरे लिए, आयशा अख्तर के लिए ढेर ढेर दुआएं कीजिए कि मेरी जबान, मेरे इख्तियारात अल्लाह करीम अपने ताबे कर ले, पैसे खैर बन जाऊं, पैसे राहत बन जाऊं सबके लिए। बहुत दुखी हो जाते हैं अपने ही कभी कोई शिकवे गिले के कोई ऐसे लम्हात होते तो दुखी हो कि कहते अच्छा आप सब मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला से दुआ हूँ, दुआ गो हूँ, वाला आप सबको, हम सबको बाइस खैर बना दे, बाइस राहत बना दे, एक दूसरे के काम नेकी में काम और बुराई से मना करने वाले हम बन जाए, अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे बंदे बंदियां बन जाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे, इंसान है, भूल चूक भी होती है, लग्जिशें भी होती हैं, अल्लाह तू माफ कर दे, करम कर दे, रहम कर दे, आमीन सुमामी या रब्बुल आलमीन। इकराम, इस वक्त ये जो मैंने आपके लिए कलाम जो है ना सिलेक्ट किया है, ये रबीउल अव्वल शरीफ की नाते मुबारका, नाते पाक, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन करें कि आप इसकी डेप्थ में खो जाएंगे, सुनते सुनते जितनी आप विशेस करेंगे, मेरा अल्लाह से ईमान है, कवी ईमान है, अल्लाह ताला से दुआ भी है, अल्लाह ताला हमें ढेर ढेर इसके फयूज़ और बरकात खजाने लूटने की तौफीक दे। आप खुद सुनेंगे तो आपकी खुद बहुत तवज्जो जो है कुर्बे इलाही की तरफ हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और कुर्बे रसूल, आले पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो जब मबजूल करके उनके खजानों से मांगते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह ताला जिस महफिल में जाते हैं वो महफिल बावकार बन जाती है, वो वहां पे सुकून आता है, उनसे मिलने में, इंसानियत की खिदमत में सुकून है, इंसानों को मिलाने में, तोड़ने में नहीं जोड़ने में सुकून है। तो अल्लाह ताला की खूबसूरत बंदे बंदी बंदे बंदियां बने और देखें ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर माशाल्लाह पुरकैफ है और दिलों को हमारे सुरूर देने वाली है।

माशाल्लाह सुबहानल्लाह, बहुत ही रूह परवर जिसे कहते हैं रूहानी कैफियत वाली नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी हमने। यही तो बात है कि जब बात हम अल्लाह पाक की और फिर नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आले बैते रसूल आले पाके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो क्या हम नज़र नियाज तक महदूद हो जाते हैं? भाई बहुत बड़ा ये सोचने का लम्हा फिक्रिया है। आप सबसे मैं पूछती हूँ कि मैं खुद हम सब मिलके ये सोचते हैं कि क्या हम नजर नियाज तक रह गए? उनके पाकीजा किरदार आज तक उनकी जबान पाक उनकी जबान मुबारक से किसी को जरूर नहीं पहुंचा। मैं कुर्बान जाऊं, हम उनके मानने वाले हैं, हम उनके उनके घराने के नौकर और खादम और दिलो जान से उन हस्तियों पर जान निछावर करने वाले प्रैक्टिकली क्या है ये सोचना है। वक्त का बहुत बड़ा ये जो है इस वक्त प्रैक्टिकली सोचने का एक बहुत बड़ा सवाल है हम सबसे। हमने अपने नफ्स को कितना आजाद, मैं ये, मैं वो, मैं तुम्हें जरूरत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, तुम, मैं, ये, मैं, आप सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। इनका बस नहीं चलता कि किसी को नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह क्या से क्या ही कर दें। मेरे पास वो अल्फाज नहीं मैं कह सकती यहां बैठ के। आप सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। खुदा के लिए, खुदा के लिए, मैं तो इसीलिए आप सबसे कहती हूं खुदा के लिए मेरे लिए दुआ करें कि कभी कहीं से

जी बिल्कुल मुझे सामीन इकराम प्रेफरेशन रेडियो 1430 AM पर आप जुमा करीम की खसूसी नशियात समात फरमा रहे हैं। ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk हमारी वेबसाइट और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। जब हर तरफ से आपको लगे कि कुछ हवा जो है वो नाखुशगवार हो गई है, फिजा में कुछ थोड़ी जो है वो खूबसूरती नहीं रही और हमारे कुछ मामलात जो है वो दरहम बरहम हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, मामलात को सुलझाने के लिए अपने हालात की दुरुस्तगी के लिए वो हमें जो है हमारा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ की तरगीब देता है। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हमारी तरबियत फरमाई, हमें माशाल्लाह हमारे लिए उस्वा हसना और हमारे लिए खूबसूरत माशाल्लाह उनके हर खूबसूरत सर आंखों पर उनका कहना और उनका अमल, उनकी सुन्नत पाक सर आंखों पर सुभान अल्लाह हर परेशानी का जो हल है ना, मसले का हल वो दुरूद पाक में, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। दुरूद ताज जो है, दिल बहुत उदास है, कुछ मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, हालात जो है हमारे हक में नहीं चल रहे, फिजा जो है थोड़ी सी अबर आलूद है, तो आइए दुरूद पाक का सहारा लेते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों को चैन दे, सुकून दे, हमारे मामलात अल्लाह पाक जो है वो सुलझा दे, हुस्ने सलूबी पे हुस्ने असलूबी पे आ जाए इंशाल्लाह ताला। आइए ये दुरूद पाक जो है वो सुनने की सआदत हासिल करते हैं।

0: You are listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114-308-2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 low solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: तुसा की परेशान खलते हुए जी
2: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गाड़ियां नहीं एमओटी करने भाए कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
2: ए ए एमओटी वाले हैं किधर
3: ए ए एमओटी प्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गाड़ी निकलो ते मौजा करो फोन नंबर 07867862585
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: 96.7 Link FM.
7: You are listening to Link FM.
6: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
8: Link FM.

जी बिल्कुल मेरे सामीन इकराम, ब्राफरेशन रेडियो 1430 AM पर अब यौम आज़ादी पाकिस्तान के जो मिली नगमात और जितना प्रोग्राम है हमारा दुरानिया, ये हम उसकी नज़र करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ प्रोग्राम में रहिए। हमारी वेबसाइट brafarationradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। और यकीन करें कि ये जज्बात जो है, मैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से ये एक मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वक्त ये जो मैं आपके सामने पेश करने लगी हूं, मैं इसको सस्पेंस में रखना चाहती हूं, क्योंकि जब आवाज आपके कानों में गूंजे तो अकीदतन एहतराममंद खड़े हो जाइएगा। जिंदा कौमे ऐसे नेशनल एंथम पर खड़ी हो जाया करती है। हमने खड़े होकर ये जिंदा कौम होने का सबूत देना है। जी बिल्कुल।

0: फुट आइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पहल सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
1: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी मेनी स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
1: मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio.
3: जी बिल्कुल सामिन इकराम, ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का कुछ और हिस्सा आगे बढ़ाएं, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk, हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर लेना मत भूलिए 01274306677। अरे भाई जब खुशियां अल्लाह ताला देता है तो बंदे को दामन फैलाकर समेट लेनी चाहिए। आज इन खुशियों के मौके पर हम सब नफरतें, कबूरतें, बुगज, हसद, अनाद, दुश्मनियां सब खत्म करके एक दूसरे को गले लगाएं। और मेरा मतलब है देखिए, फीमेल को देखिए, यहां पे बात बहुत बड़ी बन जाती है तो फिर बड़ी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, फौरन डिस्क्लेमर मारना पड़ता है, फौरन इसलाह करनी पड़ती है फीमेल से फीमेल। और जो हमारे ब्रादरान और बच्चे हैं, बूढ़े जवान, एक दूसरे को खुशियों से आज गले मिलकर ये यौम आजादी पाकिस्तान जो है वो मनाए। खुशियां जब अल्लाह ताला वो कहता है, अल्लाह वो कहते हैं ना सियाने के छप्पर फाड़ के जब खुशियां अल्लाह ताला दे तो फिर एक्साइटमेंट भी उसके मुताबिक कर लेनी चाहिए। मौज़ूसाहिब-ए-इकराम, इस वक्त में आप हम सब मिलके ये जो है मिली नगमा खराज तहसीन करेंगे पेश अपने वतन को। मैं भी साथ पर गा रही हूँ, हमारा ये जो चैनल है रेडियो, ये भी, आप भी, हम सब, थ्री वे सिस्टम टुगेदर, वाओ अमेजिंग। चलो देर किस बात की, नेकी और पूछ पूछ हमें भी हक है अपने वतन को सल्यूट करने का, अपने वतन को सलाम करने का, खराज तहसीन पेश करने का। इससे पहले कि हम अपने वतन को खराज तहसीन पेश करें, एक आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि हम बड़े अदब एहतराम से अपने बैकग्राउंड बड़े बड़े झंडे लगा के सलूट पेश करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सलाम पेश करते हैं, मिल्ली नगमे, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां, वाओ, हक है सबका, सब करें। लेकिन हमें अपने आप को देखना है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। वो तकलीफ रफा दफा कर ले किसके लिए? अल्लाह पाक की खुशी के लिए। फिर दर्जात कौन बुलंद करता है? अल्लाह पाक। हम सबको एक दूसरे की दुआओं की बहुत जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको जो है खुशियां बांटने वाला, अमन कायम करने वाला और शर और फितना अंगेजी फैलाने से और फैलने से रोकने वालियां और वाले बना दे। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकअल्लाह खैर। जी बिल्कुल मज़े सामने इकराम, हमारा भी इन खुशियों पे हक है, तो आइए सब मिलके आप भी पढ़े जरा ये मिल्ली नगमा, आज गुनगुना के दिखा दे सारे मिलके। और इस वक्त रेडियो हमारे साथ आप हैं और आयशा अख्तर, आइए खूबसूरत मिल्ली नगमा।

और जाने वाली है। इससे पहले कि मैंने बहुत ही खूबसूरत सी एक दुआया कलमात जो है आपके लिए होल्ड ऑन किए हुए हैं और कुछ अल्फाज हमारे उन आजादी के लम्हात को जो है वो मैं बयान करूंगी कि जिस कदर और जिस हद तक हमें इजाजत दी है यहाँ पे बैठ के अपने वतन की आजादी हासिल करने का थोड़ा सा प्रोसेस और थोड़ा सा अमल जो है आप तक बयान करें। इससे पहले ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM हमारा जो रेडियो चैनल है और हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। आशा अख्तर के संग आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम हमने माशाल्लाह 3 मरहले इसके तय किए, जो जुमा करीम माशाल्लाह और ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद की खुशी में माशाल्लाह जो है हमने कलाम लगाए अल्हम्दुलिल्लाह और फिर अब यौम आजादी पाकिस्तान जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बच्चे को पता है कि जो तस्वर पाकिस्तान है वो किसने पेश किया था, जो इसका एक आइडिया था, एक फ्रेम जिसे कहते हैं अपने वतन का, और किसकी ये सोच थी कि कैसे जो है एक जो हमारा रहन सहन हमारे रस्म रिवाज के अलावा जो हमारी इबादत के तौर तरीके हैं उनके लिए हमें फुर्सत चाहिए, हमारे अपने आदात वार, हमारे अपने सोर्सेज, हमारे अपने हदूदों का यूद जो है लिमिटेशंस बाउंड्रीज होनी चाहिए जिन में हम आजादी के साथ अपनी हर हरकत सकनात जो है वो अपनी बाउंड्रीज जो हमारे लिए एक मुतय्यन कर दी गई है हमारे इस्लाम ने तो उसके मुताबिक हो, तो फिर एक आइडिया वही सूफी बुजुर्ग और वही वो अल्लाह का जिसे बंदा और अल्लाह के बहुत करीब शायर मशरिक जिन्हें कहा जाता है अल्लामा इकबाल का ये जो एक आइडिया था कि उन्होंने महसूस किया और फिर शायरी में भी आपको जा बजा जो है उनकी शायरी में ये मिलेगा कि कैसे हमारी कौम जो है वो इस्लामी इकदार से जो थी वो हटती जा रही थी और इस्लामी इकदार जो है वो पामाल भी किसी हद तक कह सकते हो रही थी। तो ये देखिए अल्फाज की कमी बेशी के लिए मैं माजरत चाहती हूँ लेकिन हमारी तारीख हमें बताती है कि जब हमारे ये सारे हालात वाकयात वहां पे हो रहे थे तो हमें तो एक प्लेट में मिल गया ना, जिसे कहते हैं कि प्लेट में बनी बनाई जो गवर्नमेंट कह लें जो हमें वतन है बना बनाया मिल गया, तो लेकिन हम उनको खराज तहसीन खराज अकीदत पेश करते हैं कि जिन्होंने ये इतनी पायदार मजबूत किस्म की सोच जो है वो सोची, तो शायरी मशरक अलामा इकबाल का नाम जो है सरे फहरिस्त है, फिर इसके बाद जो है सर सैयद खान है, बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं, लियाकत अली खान है और बड़े इनके साथ जयुद्ध जिसे कहें कि वो पॉलिटिशियंस जो थे वो मिले और फिर अलामा इकबाल का जो है अलामा इकबाल की शायरी की आप लिमिट्स देखें, शायरी का अंदाज देखें, इनका पोइट्री का इनका अंदाज, इनका सोचने का जाविया देखें, तो वो वाकई मजबूर कर रहा था कि इनके लिए जो मुसलमान कौम है इनके लिए एक अलहदा वतन का वजूद जो है वो जरूरी है और ये आइडिया जी पहुंचा अलामा हमारे कायदे आजम कायदे मोहतरम कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के, जो आपको पता है कायदे आजम की सारी हिस्ट्री का कि वो बारेट लॉ जो है जिसे कहते हैं लॉ की डिग्री जो है वो इधर से लंदन से आई थिंक सो हासिल करके गए थे और बड़े बड़े जो थे ये कायदे आजम के साथ इनके अजाइम जो है और एक ऐसी मजबूतो मुस्तहकम पर्सनालिटी के मुसलमान कौम को इन पर फख्र है कि इन्होंने जो जिदोजहद हुसूल पाकिस्तान के लिए की, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और चीदा चीदा नुकात ये और इनके जो बेस्ट जो कायदे आजम ने अपनी तहरीक में किया वो सबसे बेस्ट जिन कौमों

जी मैंने सामने निकला वो क्या है कि मैंने तो बहुत ही खूबसूरत से रखे हुए थे संभाल के नगमात, लेकिन ये एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं लेजेंडरी हमारी जो आर्टिस्ट है, हमारी फनकारा मलका तरन्नुम नूर जहां को, के हाय हाय ये अगर जब सुनेंगे तो कितनी आंखों से आंसू ही बह जाएंगे। ट्रिब्यूट है जी, सलाम है जी इन बड़ी हस्तियों को।

0: Link FM Sheffield. Link FM.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
2: मैं औरंगजेब चौधरी।
3: मैं असलम भुट्टा।
4: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
5: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
6: मेरा नाम अहमद अस्कर है।
7: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
8: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
9: मेरा नाम इमरान है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: Your number one for news in Sheffield. Link FM.
1: खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं।

0: is Abdul Rahman.
1: My name is Shahin Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rami Shrock.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
11: And the winner is...
12: Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
0: My name is Abdul Rahman.
1: My name is Shahin Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rami Shrock.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
17: 24 hours of Pakistani music celebrating our culture, our memories and our homeland. Pakistan Zindabad.

14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016, एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। और जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा।
1: बहुत

0: हमारी पहचान पाकिस्तान है, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है। आज लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान ने हमें क्या नहीं दिया। हमारी जितनी भी आबरू है इस वतन की वजह से, इस मिट्टी ने हमें शनाख्त दी, इस मिट्टी ने हमें पहचान दी, और हम अपना आखिरी मदफन भी इस मिट्टी में चाहते हैं।
1: तो अपना अलम है, रंज है, गम है, निहन है, मगर अपना वतन अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, अपना वतन अपना वतन है।
2: ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो।
3: Pakistan Muslim Center celebrating Independence Day of Pakistan on Saturday 14th of August from 11 a.m.
4: There will be flag hoisting, rides, henna artists, face painting, kids performance, food stalls and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 014 243 6091 or email us on info@pmcuk.org.
5: हम तो मिट जाएंगे ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक।
6: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम। सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम। दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: You are listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: ते तुसा की परेशान खलते हुए हो जी
2: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने कार वे या वैन रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत लाजवाब सर्विस
2: ए एमओटी वाले हैं किधर
1: ए

0: मंजिल जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। 24 आवर्स ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक सेलिब्रेटिंग अवर कल्चर अवर मेमोरीज एंड अवर होमलैंड। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 एफएम।
3: सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान, सेलिब्रेटिंग फ्रीडम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जश्न आजादी पाकिस्तान के नगमों के साथ। आप सुन रहे हैं खुसूसी यौम आजादी नशरियात सिर्फ लिंक एफएम 96.7 एफएम पर।

0: दादा जान आप क्या सोच रहे थे?
1: इस वतन की मट्टी गवाह है, जब कभी किसी दुश्मन ने इस पर अपने नापाक कदम रखने की कोशिश की तो हमने इसकी इज्जत और वकार की हिफाजत की। अब इस मिट्टी की हिफाजत आप सब ने करनी है, ताकि कल को ये मिट्टी गवाही दे सके।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
1: Link FM Sheffield.
2: You can also contact Nigat Basharat on 07988033534 or Tariq Hussain on 07495028382.
3: आजादी के रंग पाकिस्तान के संग, सिर्फ लिंक FM पर. दिल में पाकिस्तान, लबों पर

0: जश्न है आजादी का, जोश है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

तो अपना अलम है, रंज है, गम है, निहन है, मगर अपना वतन अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, अपना वतन है।

0: हम तो मिट जाएंगे ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है कियामत की सहर होने तक।
1: सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान विद म्यूजिक दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑन लिंक एफएम।

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। एनीवेयर यू गो, लिंक एफएम इज ऑलवेज देयर विद यू। लिसन ऑनलाइन एट linkfm.org। लिंक एफएम।
2: आजादी के रंग, पाकिस्तान के संग, सिर्फ लिंक एफएम पर।

14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016, एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: मंजिल जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016, एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: जश्न है आजादी का, जोश है पाकिस्तान का. पाकिस्तान जिंदाबाद. माजी के यादगार नगमे, आज की खूबसूरत यादें. जश्न-ए-आजादी के मौके पर पाकिस्तान के साथ

0: कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। और जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा।
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: Your very own community radio station.
1: Link FM.
2: हमारी पहचान पाकिस्तान है, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है. आज लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान ने हमें क्या नहीं दिया. हमारी जितनी भी आबरू है इस वतन की वजह से. इस मिट्टी ने हमें शनाख्त दी, इस मिट्टी ने हमें पहचान दी, और हम अपना आखिरी मदफन भी इस मिट्टी में चाहते हैं.

0: और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
1: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: तो अपना अलम है, रंज है, गम है, निहन है, मगर अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, अपना वतन है।

0: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
1: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.
2: हम तो मिट जाएंगे ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक.

0: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
1: Listen live online at linkfm.org. Link FM.
2: आजादी के रंग पाकिस्तान के संग सिर्फ लिंक एफएम पर। ये परचमों में अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन थर्सडे 14th ऑफ अगस्त 2025 जॉइन अस एट अवर आजादी मेला एंड बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन
3: देयर विल बी फ्लैग होस्टिंग हेना आर्टिस्ट्स फेस पेंटिंग किड परफॉर्मेंस फूड स्टॉल्स एंड मच मच मोर फॉर स्पॉन्सरशिप एंड स्टॉल बुकिंग कॉन्टैक्ट पीएमसी ऑन 01142436091
2: You can also contact Nigat Basharat on 07988033534 or Tariq Hussain on 07495028382.
4: 96.7 Link FM.

0: You're listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
3: Mazir Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00571009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: خوش اخلاق عملہ لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر ری ٹیسٹ بالکل فری اے اے ایم او ٹی کلے سٹریٹ اٹکلیف شیفیلڈ ایس 9 2 VE غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 0786-786-2585
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
7: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
8: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.
9: इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा और जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा
10: हमारी पहचान पाकिस्तान है हमारी शनाख्त पाकिस्तान है आज लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया पाकिस्तान ने हमें क्या नहीं दिया हमारी जितनी भी आबरू है इस वतन की वजह से इस मिट्टी ने हमें शनाख्त दी इस मिट्टी ने हमें पहचान दी और हम अपना आखिरी मदफन भी इस मिट्टी में चाहते हैं

0: अपना अलम है, रंज है, गम है, निहन है, मगर अपना वतन अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, अपना वतन अपना वतन है।
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ लिंक FM।

0: Our voice, our choice, our radio station, Sheffield's Link FM. Link FM.
1: हम तो मिट जाएंगे ऐ अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक।

0: मंजिल जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान विद म्यूजिक दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑन लिंक एफएम।

0: दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: दिस इज लिंक एफएम।
3: ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ पाकिस्तानी म्यूजिक सेलिब्रेटिंग अवर कल्चर, अवर मेमोरीज एंड अवर होमलैंड। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: दिल में पाकिस्तान, लबों पर पाकिस्तान, जश्न आजादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114 261 8182.
1: Jashan hai azadi ka, josh hai Pakistan ka. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे 16th ऑफ अगस्त 2026। कम अलोंग विद योर फैमिली एंड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशंस।
2: एट द हार्ट ऑफ द सिटी यू आर लिसनिंग टू लिंक एफएम।
3: लिंक एफएम।
4: The light of freedom begins with a single flame.

0: You speak the language of freedom, and we speak your language everywhere. Mobilink.
1: If you would like to promote your business on Link FM, our team can help you. Contact us on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
2: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
3: माजी के यादगार नगमे, आज की खूबसूरत यादें। जश्न आजादी के मौके पर पाकिस्तान के साथ लिंक एफएम। आप सुन रहे हैं लिंक एफएम की स्पेशल ब्रॉडकास्ट सबको पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मुबारक।

0: पहचान पाकिस्तान है, हमारी शनाख्त पाकिस्तान है। आज लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, पाकिस्तान ने हमें क्या नहीं दिया। हमारी जितनी भी आबरू है इस वतन की वजह से, इस मिट्टी ने हमें शनाख्त दी, इस मिट्टी ने हमें पहचान दी, और हम अपना आखिरी मदफन भी इस मिट्टी में चाहते हैं।
1: पाकिस्तान जिसका सब्ज मेरी लगों में दौड़ता है, और जिन लगों में सब्ज खून दौड़ता हो वो बंजर नहीं हो सकती। इसी यकीन से मैं आज तक अपने महाज पर अकेला लड़ता रहा, इसलिए कि मैंने इस मिट्टी को अपना मान बनाया, जिस मिट्टी ने मुझे शान बनाया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: तो अपना अलम है, रंज है, गम है, निहन है, मगर अपना वतन अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, अपना वतन अपना वतन है।
1: हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक।
2: सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ पाकिस्तान विद म्यूजिक दैट ब्रिंग्स अस टुगेदर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑन लिंक एफएम।

0: today, tomorrow, every day. Sheffield's Link FM.
1: 24 hours of Pakistani music celebrating our culture, our memories, and our homeland. Pakistan Zindabad.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद.
3: मैं और रंजीत चौधरी.
4: मैं असलम भुट्टा.
5: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से.
6: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है.
7: मेरा नाम अहमद अस्कर है.
8: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं.
9: मेरा नाम अंजुम अफसाद है.
10: मेरा नाम इमराना है. कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7.

0: मिला हमें हिजरत करके। घर के सब लोग शहीद हो गए। बड़े कहते थे हम ना सही, आने वाली नस्लें आजाद रहेंगी, मगर आज वो नस्लें ना हमें जानती हैं और ना पहचानती हैं।
1: ठीक कहते हो बरखुरदार। पाकिस्तान की रगों में तुम जैसे शुहदा का खून दौड़ता है, और शायद हम ये एहसान अक्सर भूल जाते हैं। मगर आजादी एक मुसलसल काविश का नाम है, और इस वतन की मिट्टी हर पल इस बात की गवाही देती है।

0: वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। ये खामोशी कहां तक, लज्जत फरियाद पैदा कर, जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में।
1: ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई। यूं ही हमेशा चिल्लाए हमने आग में फूल, न उनकी हार नई है न अपनी जीत नई। इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिरात में हम दिल बुरा नहीं करते।

0: listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccination।
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM। दिल से आपके साथ लिंक FM
3: Sheffield। यू आर लिसनिंग टू लिंक FM 96.7।
4: जश्न आजादी पाकिस्तान के नगमों के साथ आप सुन रहे हैं खुसूसी यौम आजादी नशरियात सिर्फ लिंक FM 96.7 FM।
5: My name is Shireen.
6: My name is Abdul Rahman.
7: My name is Shahin Mudassir.
8: This is Rahul.
9: My name is Rizwan Ishraq.
10: My name is Ashan.
11: My name is Azan Mudassir.
12: This is Ariba and you are listening to Link FM.
3: You are listening to Link FM 96.7.
13: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
14: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning। अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज, फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning। Contact number 07955198814 and 07955198824।
15: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
16: And the winner is
17: your business being heard on the radio.
18: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
0: Sheffield's very own community radio station.
19: Link FM.
6: My name is Shireen.
7: My name is Abed Rahman.
8: My name is Saeed Mudassir.
10: This is Rahul.
19: My name is Rizwan Ishraq.
20: My name is Ashan.
21: My name is Azan Mudassir.
22: This is Ariba and you are listening to Link FM.
0: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
23: Link FM.

0: मंजिल जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Pakistan Muslim Center celebrates Pakistan Independence Day on Sunday, 16th of August 2026. Come along with your family and join us for the celebrations. Dil mein Pakistan, labon par Pakistan. Jashn-e-Azadi Mubarak. Pakistan Zindabad. Jashn hai Azadi ka, जोश है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: The voice of the communities, 96.7 Link FM.
1: Link FM.
2: इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। और जब पलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, जब पलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे 16th ऑफ अगस्त 2026। कम अलोंग विद योर फैमिली एंड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशन।
3: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kid performance, food stalls, and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.
2: Ye parchamon mein azim parcham, ataye rabbe kareem parcham, hamara parcham, ye pyara parcham. खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे 16th ऑफ अगस्त 2026। कम अलोंग विद योर फैमिली एंड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशन।
3: देयर विल बी फ्लैग होस्टिंग, हेना आर्टिस्ट्स, फेस पेंटिंग, किड परफॉर्मेंस, फूड स्टॉल्स and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact.
4: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
10: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
11: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग आले। खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब है नहीं, एक बारी अजमाई के तको। शादी ब्याह, सालगिरह, मानिया, मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ता इस महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो। एक और भी गल बुझो, खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने। आर्डर निका होया या बड़ा, ऑलवेज वेलकम। खाने ने आर्डर वास्ता भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 0793173747
12: या 0778485093।
13: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related
3: Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

0: news, health, sport, educational programs, and much more, only on Link FM.
1: ये परचमों में अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे 16th ऑफ अगस्त 2026 कम अलोंग विद योर फैमिली एंड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशन।
2: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls, and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.
3: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: ये परचमों में अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम हमारा परचम ये प्यारा परचम खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो।
3: पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे 16th ऑफ अगस्त 2026 कम अलोंग विद योर फैमिली एंड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशंस।
2: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls, and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.

तो अपना अलम है, रंज है, गम है, निहन है, मगर अपना वतन अपना वतन है। भूख है, गरीबी है, कुछ भी है, अपना वतन है।

0: products and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: अंकल
2: मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़िया नी एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत, लाजवाब सर्विस।
2: ए एमओटी वाले है किधर?
1: ए

0: You're listening to Link FM.
1: चौदह अगस्त 2016 एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: राह की मंजिल।
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ।
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: द लाइट ऑफ फ्रीडम बिगिंस विद अ सिंगल फ्लेम।

0: Rahman.
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
11: And the winner is
12: Your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
17: My name is Abdul Rahman.
1: My name is Sai Mudassir.
2: This is Rahul.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
14: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
15: Link FM.

0: Linking communities, thinking positive. This is Link FM.
1: Pakistan, jiska sabz meri lagon mein daudta hai, aur jin lagon mein sabz khoon daudta ho, wo banja nahi ho sakti. Isi yakin se main aaj tak apne mahaz par akela ladta raha. इसलिए कि मैंने इस मिट्टी को अपना मान बनाया, जिस मिट्टी ने मुझे शान बनाया. शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान.

0: पाकिस्तान।
1: तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ, ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा। तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ, ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
2: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
3: ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे 16th ऑफ अगस्त 2026। कम अलोंग विद योर फैमिली एंड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशंस।
4: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.
5: Music, community, conversation and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
6: This is Link FM.
3: ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे 16th ऑफ अगस्त 2026। कम अलोंग विद योर फैमिली एंड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशंस।
4: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.

0: creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
5: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
6: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग वाले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब ही नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ता एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ता भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर राबता करो 07931737547
7: या 07784850934
8: Do you ever find yourself lonely or isolated? Or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
9: یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو پاکستان مسلم سینٹر سیلیبریٹس پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آن سنڈے 16th of August 2026 کم along with your family and join us for the celebrations
10: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls, and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.
9: Ye parchamon mein azim parcham, ataye rabbe kareem parcham, hamara parcham, ye pyara parcham. خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو پاکستان مسلم سینٹر سیلیبریٹس پاکستان انڈیپینڈنس ڈے آن سنڈے 16th of August 2026 کم along with your family and join us for the celebrations
10: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.
11: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
12: लिंक एफएम शेफील्ड
13: चौदह अगस्त 1947 चौदह अगस्त 2016 एक ख्वाब एक हकीकत एक रोशनी एक वादा इस मुल्क से वफा करने का जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: और हर सूट
1: दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।
4: ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर सेलिब्रेट्स पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे ऑन संडे 16th ऑफ अगस्त 2026। कम अलोंग विद योर फैमिली एंड जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशन।
5: There will be flag hoisting, henna artists, face painting, kids performance, food stalls and much, much more. For sponsorship and stall booking, contact PMC on 0114 243 6091.
6: The latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station, Sheffield's Link FM.

0: ओए, सारा दिन गाना सुनता रहता। पसंद रसूख हुआ है?
1: दादाजी, दादा सुनो पेजने, दाखो अली जफर दे।
0: हाँ, होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देखा। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान मिलाएगा।